0: और मैं और महेंद्र में हुआ क्या तरपुर में
1: और
0: के कारण में कुछ मारे नहीं और आई कुछ मारे में और दे दूसरे ना कोई मैं कहा गई ना करवा की नहीं गई
1: ते
0: इंजीनियरिंग दे ना ना ना बुक मेरा वो की नहीं ना वो ना वो भी मैं
1: और वो
0: Terbun, mereka ni kan, nanti kerawat kerawat tengah bunga yo memang korang itu kape. Senap semua yang kerawat terbun.